एक अमृत नाम मेरा हृदय सिंचा, जे तेरे तीर्थ नहाए अहंग बुद्ध मैल लाए।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: 1550 KRPI Radio ते चल रहा है लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड सरी।

कोई ऐसो रे सुख है दाई, प्रभ की कथा सुनाई, तिस भेटे गात होए हमारी। सो प्रसन्न गोपाल राय, काटे रे बंधन माए,

अंदर तक पहुंच सिर्फ परमात्मा दिए, घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, अंतर्यामी। भाई गुरदास एक पंक्ति विच कहंदे ने, अंतर जामी सुन कंपत हूं अंतरगत, हे प्रभु मैं ते कंब जाना जद पता चल रहा तू ते अंदर वेखदा, तेरी पहुंच ते साड़ी सोचनी तक असी की सोचते रहने, तेरी पहुंच ते साड़े विचारां तक है। पता है मनोचिंतक की कहंदे ने, मनोविज्ञानक, अगर मनुख दी किधरे मनुख दे मन तक भी पहुंचावे, दुनिया विच मित्रता भंग हो जाएगी, रिश्तेदारी भी टूट जाएगी, कुछ भी नहीं रहेगा। ऐसा केड़ा मनुख है जिस दे अंदर किसी वक्त माड़े विचार ना चल दे, गलत ना सोचदा हो, गलत यादा ना चल दिया। मनोचिंतक ते कहनन जिस नाल बहुत प्यार है, मित्र है, उदे बारे भी कदी माड़ी सोच नहीं चल सकती है, गलत विचार भरा बारे भी चल सकते हैं, गलत सोचनी पत्नी बारे भी चल सकती है, पति बारे भी चल सकती है, बच्चियां बारे भी चल सकती है। सोचनी दे तल ते मनुख आजाद है, जिस बारे बुरा सोच रहे वो नहीं वेख सकता, जिस बारे बुरे विचार इसके अंदर चल रहे ने वो नहीं देख सकता, देख ही नहीं सकता, कोल बैठा हुए भावे। तो मन दे तल ते मनुख बिल्कुल स्वतंत्र है, आजाद है। हां मन ते निगाह परमात्मा दी, क्योंकि वह व्यापक है तो उदा वेखना भी व्यापक है, वो व्यापक है उदा सुनना भी व्यापक है। देखत सुनत सदा है संगे, मैं मूर्ख जानिया दूरी रे। हर वक्त कोई मनुख किसे नु नहीं देख सकता, कोई बच्चे हर वक्त मां बाप की निगाह थले नहीं आते, भरा की निगाह थले हर वक्त भरा नहीं आता, पति की निगाह के थले हर वक्त पत्नी नहीं आती, और पत्नी की निगाह के थले हर वक्त पति नहीं आता। पर सारे संसार के जीव परमात्मा की निगाह के थले ने, और हर वक्त हर वक्त सब कुछ उसकी निगाह के थले। पेखत सुनत सदा है संगे, मैं मूर्ख जानिया दूरी रे। सब तो वड्डी सियाणप है, अकलमंदी है, नेड़े करके जानदा है, परमात्मा नेड़े है, देख रहे है, मैनू सुन रहे है, ये सब तो वड्डी अकलमंदी है, ये सब तो वड्डी दानशमंदी है, और ये सब तो वड्डी मूर्खता है कि रब कित्थे देखदा है। कानून दी ते पहुंच है कोई नहीं, समाज ते देखदा नहीं पिया, ते रब नूं मंदा नहीं, वो कित्थे देखदा है, जो कुछ करना है कर। महाराज कहिंदे ने, प्रभ सब किछ जाने जिन तो किया, तू जो सोचदा रहिंदा सब कुछ प्रभु नूं पता, नहीं पता होवेगा कानून नूं तो बच गया होवेगा, नहीं पता समाज नूं तेरी इज्जत मान मर्यादा बनी हुई है, लेकिन प्रभु नूं ते पता पता। परमात्मा दे बेशुमार गुणां विचों एक गुण है कि वो वेख के अणडिठ करदा है, दोखन देखत है पर देत ना हारे, वो अपना हथ नहीं रोकदा, भी इतना बुरा सोचदा रहिंदा, इहदे अंदर इतने बुरे विचार चलदे रहिंदे ने, इतने बुरे ख्यालां दा ये मालक, इहदी इतनी बुरी सोचनी, लेकिन फिर भी परमात्मा अपने हाथ नहीं रोकदा, दोखन देखत है देखदा पिया, पड़ोसी वेखदा भी नहीं ते डंडोरा पिटदा, फलाना तो इंज है इंज,

वर्णन सके महिमा जो तिहारी, हम ना सिफते कर सकत तुम्हारी। आप ले ओ तुम कथा

0: असी भक्ति तक पहुंच सकी है। जितने चिर तक मनुख भगवान नहीं होया जमदा रहेगा मरदा रहेगा, केवल भगवान ना जमदा है ना मरदा है, बाकी सब जमदे मरदे। भरम भूले नर करच कचरायण, जन्म मरण ते रहत नारायण। जन्म मरण तो नारायण रहत है, ते जन्म मरण तो रहत होना है तो नारायण ते होना पड़ेगा, इस तो बिना नहीं है, इस तो बिना चलता रहेगा, यात्रा चलती रहेगी। साहब रहमत करन, इस दे बाकी पहलू जड़े धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की अगमी बाणी ने वर्णन किए ने, थोड़े सामने फिर रखांगे। हुण गुरु के कीर्तनियां पासो एक महान शब्द सरवण करो आप। आनंद साहब का पाठ से समाप्ति फतेह प्रवान करने, वाहेगुरु जी का खालसा
1: वाहेगुरु। You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: भगत कबीर साहब इन्हां दे जन्म बारे बहुत वक्रियां वक्रियां, मैं कंट्रोवर्सी वाली कोई गल नहीं करनी जी। ये तीन तरह की धारणा है जी, कबीर साहब का जन्म क्यों होया। कबीरपंथी कहिंदे आ जी कमल दे फुल तो। एक ये भी कहा जाता है जी, एक विधवा ब्राह्मणी सी, वह रामानंद जी नूं नमस्कार करन गई। मैं निर्णा नहीं करन बैठा, मैं सिर्फ बेनती कर लगा। कई बार कई सज्जन पढ़िया हुंदा है ते मन च ना भी वह गल नहीं क्लीयर की, सिर मट्यूक मत कि रामानंद जी कोल गई, विधवा ब्राह्मणी सी, उन्हें चेहरा ढकया होया सी, ते उन्होंने आशीर्वाद दे दिती, बेटा तू पुत्रवंती हो। ते अगलिया ने कहा भी इहदा ते पति मर चुका है। उत्थे कहिंदे विधवा ब्राह्मणी दे घर च उह बचन करके बेटे दा जन्म हो गया। पर यह भी कहा जाता है जो कबीरपंथी कहिंदे आ कि कबीर साहब प्रगट होए ने कमल दे फुल दे उत्ते। पर जिहड़ी जिहड़ी गल मन्नण वाली है, इन्हां दे पिता जी दा नाम नीरू सी, उन्हूं अली भी कहा जाता है, ते माता दा नाम नीमा सी। ये भी विद्वान भाई कान सिंह नाभा ने गल लिखी है, विधवा ब्राह्मणी का जिक्र किया है। पर माता पिता जिहड़ा नीरू ते नीमा, इन्हां दा जन्म 1398 ईस्वी नूं होया है। बिक्रमी संमत 1455 नूं होया भगत कबीर साहब जी का जी जन्म जिहड़ा है। मैं अर्ज करां इन्हां नूं जिहड़ी गुरु दीख्या है इतिहास मुताबक, ते खास करके साडे गुरमत दे साहित विच भगत कबीर साहब बनारस रहिंदे आ। इन्हां दा पिता पुरखी जिहड़ा कामयाब सब नूं पता है, खड्डी ए कपड़े बुंदे। इह शुरू तों ही कर्मकांड विरोधी। मैं आप नूं तां बेनती कर लगा कि पुराने विद्वान कहिंदे ने जे खाड़कू भगत है, खाड़कू शब्द वरते जोधा वाला भाई साहब बैठे ने कबीर, सब तो ज्यादा जिहड़े शहीदां दे वेले सूरमियां वेले शब्द पढ़दे हो, वह गुरु ग्रंथ साहब सब तो ज्यादा शब्द भगत कबीर जी के उच्चारण किए हुए। मैं थोड़ा जा आप जी का ध्यान लेना इस पास, ना सोचो आप शलोक शुरू कर दते, अज अर्थ हो गए कल हो गए, आप लड़ी शुरू कर ली। कबीर साहब जी भगत कबीर जी महाराज उन्होंने बारे बनारस चो रेंदे तो उन्होंने विरोध करते हैं। उन्होंने दो तीन मैं शब्द आप साझे पहले करने चाहना। एक तो पहली गल कि भगत कबीर साहब जी महाराज उन्होंने जोधियां वाले शब्द सारे आ, थोड़े जे ध्यान न सुनो शब्द तो सब नूं चेते, जिहड़ा मारू राग विच बचन पढ़ने आ, गगन दमामा बाजियो परियो निशाना घाओ, खेत जो मांडियो सूरमा अब जूझन को दाओ, सूरा सो पहचानिए जो लरै दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरै कबू न छाडै खेत। ये शलोक भगत कबीर जी का उच्चारण किए हुए। गगन दमामा, चलो ये अर्थ बड़ी बारी आपने सुने, गगन का अर्थ आकाश है, उंजे दे दो अर्थ ने जी। कहिंदे ने दसम द्वार दे विच अनद शब्द का नगारा वजिया है। एक अंतरीवी अर्थ है कि अंदर गगन दे विच द्वार विच अनद शब्द का नगारा वजिया है। आ समा आ गया है इस मनुखा जीवन की बाजी नूं जितण दा। ते अगे फिर कहिंदे जिहदे अंदर नाम दा नगारा वज्जा है, वह संत सिपाही बन के जदों निकलदा है, वह गरीब लई मजलूम लई पुरजा पुरजा कट मरदा है, पर कदी अपना पैर पिछे नहीं हटांदा। मैं बेनती करां इत दो ने गगन दमामा, मेरा मतलब उन्हां शब्दां दा अर्थ नहीं, सिर्फ एक मैं आप नूं जानकारी लई गल कह रहा। गगन दमामा बाजियो परियो निशाने काओ, खेत जो मांडियो सूरमा अब जूझन को दाओ।

निरंकार है ना लइए नरक न जाइए जियो पिंड सब दिसदा देखा जे आख गवाइए जे लोड़े है चंगा अपना कर पुनो नीज सुधाइए जे जरवाना पर हरे जरवेश करें दी आइए को रहे।

पौड़े बिन सतगुरु किने ना पायो, बिन सतगुरु किने ना पाया। सतगुरु विच आप रखे उन कर प्रगटाक सुनाया। सतगुरु मिल गए सदा मुक्त है जिन विच हमो चुकाया। उत्तम एहो विचार है जिन सच्चे सिंह चितलाया। जग जीवन दाता पाया, जग जीवन दाता पाया।

पौड़ी शेर की दिशन तो खी जिन सच सच ते आया ओनी मंदे पैर ना रखे उन कर सुखे तो धर्म कमाया कमाया ओनी दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया तू बख्शी सी अगला नित देवे चढ़े सवाया वड्याई वड्डा पाया वड्याई वड्डा पाया।

दीपा लोहा मंडला खंडा बिरपंडहा अंडू जेरी जुट पजा खानी सेक जा सोमत जाने नान का सरा मेरा जनता नाग जंतु पाए कैसा माले सबनहा जिन करते करना किया चिंता भी करनी ता सो करता।

पौड़ी सच्चा साहेब एक तुझने सचो सच बरताया, जिस तू दहेज से मिले सच ता तिने सच कमाया, सतगुर मिलिए सच पाया, जिनके हृदय सच बसाया, मूर्ख सच ना जाननी मनमुखी जन्म गवाया, विच दुनिया का है आया।

0: लोक महला पहला पर गड्डी लदिए पर भरिए साथ पर बेड़ी पाइए पर गड़िए खात पढ़िए है जेते वर्ष वर्ष पढ़िए जेते मास पढ़िए जेती आर जा पढ़िए जेते सास नानक लेखे की गल होर हो में जखना चा
1: पहला लिखल पढ़िया ते ता कड़िया बहुत तीर्थ पव्या ते तो लव्या।

0: सचकाल पूर्ण वर्त्या कल काल बेताल बियो बीज पतले के अब क्यों बेदाल जेक हो तो कबे रुति हुरत होए नान पाहे बारा कोरे रंग ना सोए पैवित खुमचड़ा ये सरुम पतन होए नान पक्ति जे रपे पूरे सोए ना कोए
1: महला पहला लब पाप धोए राजा मेहता कूड़ हो शिकदार काम ने इज्जत पूछिए बह बह करे विचार अंधी रजित ज्ञान होनी पाहे प्रेमदार ज्ञानी ने चेवा देवा विरूप करे सिंगार उच्चे कुके वदा गवे जो दका विचार मूर्ख पंडित हिकमत हुजर संजय करे प्यार धर्मी धर्म करे गवा वह मंगे मुख द्वार जति सदा वह जुगत न जाने हैं षड बह है करबार सबको पूरा आपे होवे कठिन कोई आखे पत प्रवण पिछे पाइए ता नानक तोलिया जापे
0: ज्ञान का सच्चा वेखे सोए सबनी चारा मारिया करता करे सोए अगे जात ना जोर है।

0: तुवा पूरा तपे का सत गिर तुवा हो कलजुगरा थगन का कूड़ा गैर तुवा हो।
1: पहला शाम कहे सितंबर समय सच में अच्छा सच रहे।

0: नील बस्त्र ले कपड़े पहरे तुरक पठानी अमलकिया
1: चारे वेद होए सुचार पढ़े गुणे तीन चार विचार पाओ भगत करनी।

और सतगुरु बठों वारिया जित मेरे खसम संभालिया जिनका उपदेश ज्ञान अंजन दिया इन नेत्री जगत ने हालिया खसम छोड़ दूजे लगे डूबे सेवन जा रहा सतगुरु है बोहिता।

0: ब्राह्मण वटे आए कोहे बकरा रिन खाया। सबको आखे पाए हुए प्राणा सटिए फिर पाया होर नानक तग न तुटे जे तग हो वै जो।
1: महला पहला नाय मनिए पत उपजे साला ही ससूत दरगे अंदर पाइए तग न तुट सपूत। महला पहला तग न इंद्री तग न नारी पलके थुक पवे निदारी तग न प्यारी तग न हथी तग न जेवा तग न अखी। वे तग आया पे बते

महला पहला जेकर सूतक मनिए सब ते सूतक होए गोया ते लकड़ी अंदर कीड़ा होए जेते दाने अन के जिया बाज ना कोए पहला पानी जीव हज थरिया सब कोए सूत क्यों कर रखिए।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पवित्र बाणी ए तुर की बाणी दुखां दा कलेशां दा नाश करन वाली बाणी एक ओंकार तो लैके 18, 10, 20 तक सारी बाणी सर्व कल्याण करन वाली कल्याण रूप बाणी है। महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। अज संसार वल जाति पाईए हर मनुख नूं कोई ना कोई दुख लग्या होया। महाराज बाणी विच भी इस संसार दी हालत नूं दसदे हन कि जिस मनुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया। हर मनुख नूं कोई ना कोई दुख लग्या होया। किसे दा कार विहार नहीं चलदा, किसे दे कार तों दुख नहीं निकलदा, किसे नूं मुकदमा पै गया, किसे दे घर औलाद नहीं होई तां दुखी है। जे औलाद है तां हुकम विच नहीं है ओ तां दुखी है। अनेक तरह दे होर दुख हन। इन्हां सारिया ही दुखां दा जो दवा है औषधि है महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। मेरा बैद गुरु गोविंदा हर हर नाम अवखद मुख देवै काटै जम की फंदा। मेरा सतगुरु ऐसा वैद है कि मेरे तन दे रोग भी मिटा देंदा है, मेरे मन दे रोग भी मिट जांदे हन। केड़ी दवाई देंदा है, आख्या हर हर नाम अवखद मुख देवै। जदों नाम दी सिमरन दी दवाई गुरु ने मैनू बख्शी ना तां मैनू इस संसार दे दुखां दी तत्ती वा लगी, ना जमा दी तत्ती वा लगी। एथे ओथे आप परमेश्वर रखवाला हुआ। तो उस पवित्र बाणी विचों कुछ शब्द रख्या दे आप दी भेटा कर रहा। ए सर्व रोग दा नाश करन वाली बाणी, पर एक शर्त है, श्रद्धा प्यार सिदक दे नाल अमृत वेले जाग के इशनान करके ए बाणी पढ़िए तां फिर दुख नेड़े नहीं आ सकदे। आओ सारे गुरु की बाणी दा ए अभ्यास करिए, क्योंकि गुरु की बाणी तां है ही ऐसी।

0: राष्ट्रपति
1: दे प्रसाद छत्ति ही अमृत खाहे
0: जिस ठाकुर को रख मन माहे
1: दे प्रसाद सुगंधित तन लावहे
0: जिसको समृत परमगत पावे
1: दे प्रसाद बसे सुख मंदिर
0: जिस चाहते आए सदा मन

0: आज सवार से
1: संकोच करके वापस पे करूंगा। सती पाप कर सत कमाए, बहुत वड्डा दानी है, जरूर बहुत वड्डा बेईमान होवेगा, क्योंकि पापा बाजो होवे नाही मोया साथ ना जाए, बहुत वड्डे पाप ना कीते जान तो इतना धन कट्ठा ही नहीं होगा। फिर पाप का बोझ लाने वास्ते दान, महाराज कहते ने किस तरह हो सकता है, जिहड़ा कट्ठा कीता है पाप नाल, प्राप्त कीता है पाप नाल, उहदे देण नाल पुन किस तरह हो गया। सती पाप कर सत कमा, खैर धार्मिक इकट्ठ धार्मिक सोझ बोझ नूं पैदा करन वास्ते गुरु द्वारे होए सोझी पाइस, इत्थे आपां आया सूझ ते समझ लैण वास्ते। किस दी समझ? घर दी समझ, दर दी समझ। दर घर की सोझी ना है, ना घर दा पता ना दर दा पता। हुण होर भी मैं अर्ज करां, घर दे च प्रवेश उसनों मिलदा जिहड़ा पहले दर ते पहुंचे, पहले दर ते पहुंचना होंदा, दरवाजा पहले होंदा। घर बाद दे सो दर के आ, सो घर के आ जित वह सर्व संभाले। एक होर भी अर्ज करदे हां, परमात्मा निराकार है, आकार तो रहत है, इनू बयान करके मैं अगे चला। सारा आकार उस तो आउंदा जिहदा कोई आकार नहीं, सारे रूप उस तो आउंदे ने जिहदा कोई रूप नहीं, सारे रंग उस तो आउंदे ने जिहदा कोई रंग नहीं। चकर चैन अर वर्ण जात अर पात नहिं जे, रूप रंग अर रेख बेक को कह न सकत, अरूप है अनूप है। या इंज कह लो, सारे मजहब भी उस तो आउंदे ने जिहदा कोई मजहब नहीं है। ऐ शब्द भी सुन लो महाराज गुरु गोबिंद सिंह जी दे, नमस्तं अमजबे, नमस्कार है प्रभु तैनू, तेरा कोई मजहब नहीं, कोई मजहब नहीं। नमस्तं अमजबे, नमस्तस्त अजबे, हे अजब स्वरूप परमात्मा तैनू नमस्कार, तेरा कोई मजहब नहीं। ना तू हिंदू है, ना तू मुस्लिम है, ना तू सिख है, ना तू ईसाई है, ना तू यहूदी है, ना तू पारसी है, ना तू जैनी है, ना तू बौद्धी है, तेरा कोई मजहब नहीं, तेरी कोई जात पात नहीं, तेरे कोई तात मात नहीं, तेरा कोई मजहब नहीं। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज बड़ी हिम्मत ते बड़ी जुरत दिखा रहे ने थे, नमस्तं अमजबे, नमस्कार है प्रभु तेनू, तू अमजब है, तेरा कोई मजहब नहीं। मजहब एक रास्ता है, मजहब का अगर कोई माण भी कर रहा है तो रस्ते दे चे, ठीक है रस्ते चे, घर तक पहुंचने वास्ते रास्ता चाहिए। घर पहुंच गया कोई मजहब नहीं, क्योंकि जिसका घर है, जिसके घर दे च जाना है, उसका कोई मजहब नहीं। सारिया नदियां सागर की तरफ जांदियां ने, हर नदी का किसी मुल्क नाल भी संबंध है, कुछ धार्मिक क्रियावां नाल भी संबंध है, इलाके नाल भी संबंध है, ते हर नदी का अपना नाम भी है। ये गंगा है, जमुना है, गोदावरी है, नर्मदा है, सतलुज है, ब्यास है, रावी है, चनाब है, जेलम है, ब्रह्मपुत्र है, इन्हां दा इलाकियां नाल और मुल्क नाल संबंध है। असी कह सकते हैं दरिया हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान दे च वगदा है। फिर इन्हां दे नाम ने, फिर दजला है, फरात है, इराक दे विच वगदे ने, तो मुल्क ते इलाके दा संबंध उन्हां नाल जुड़ंदा है, भी ये दरिया इराकी ने, इराक दे ने, उत्थे वगदे ने, दजला फरात उत्थे वगदा। नील नदी मिस्र दे च वगदी है, तो असी कह सकदे हां इह ते मिस्री है, इजिप्शन है, मिस्र दे च वगदी है, उस इलाके नाल इसका संबंध है, इसका नाम है। थेम दरिया इंग्लैंड दे च वगदा है, असी कह सकते हैं इसका इंग्लैंड नाल संबंध है, इसका नाम थेम है। पर जब सारे सागर दे चलीन हो जाते हैं, सारिया का नाम एको ही हो जाता है कि सागर, ना गंगा ना जमुना, ना सतलुज ना ब्यास, ना रावी ना चनाब, ना गोदावरी ना नर्मदा, ना दजला ना फिरात,

धर्म तजोन सेख देश और न भेजा करु प्रेक नाग जत्र तत्र दिशा विशा हुए फैल्यो अनुराग नाम काम विहीन बेकता मुन जाय।

सुदाहै सदैव सर्वभा वेद अनुभय समस्त पराजन सदा सर्वसाजन समस्त सलाम सदैव लाकाम है निर्बाध स्वरूप गाध है नूप है ओंकार रूपे अनाद स्वरूप अनंगी अनामे त्रिभंगी।

से निर्कामं विभूते समस्तल स्वरूपे को कर्मं प्रणासि सुधर्मं विभूते सदा सच्चिदानंद सतरंग प्रणासि करिमल कनिंदा समस्तल निवासे।

समक्ष बैठ कर श्रेष्ठर फतेह प्रवान करने। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पाव सुहावे या तव गिर दुल्दे, शीश सुहावा चरणे। रस्ते के चलन वास्ते पैर चाहिए, नीति चलना औखा है, और रस्ते नु वेखण वास्ते अखां चाहिए ने तावी चलना औखा है। अखां तो बिना फिर भटकना हो जाता है, चलना नहीं आता। मंजिल दिखाई देवे, रास्ता दिखाई देवे, दृष्टि चाहिए है, लोचन चाहिए, अखां चाहिए। सिर्फ दिखाई क्यों देवे, चल सकिए, पहुंच सकिए, पैर चाहिए। जो गुरु पंथ है, जो गुरु दा मार्ग है, उससे मनुख दा ध्यान चलता है, मनुख दी सुरत चलती है। उन्हों भी अखां चाहिए, उन्हों भी पैर चाहिए। अगर अखा नहीं, रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, मंजिल दिखाई नहीं देती, अगर पैर नहीं तो रस्ते नु अबूर करना औखा है, रस्ते नु तय करना औखा है, रस्ते ते चलना बड़ा औखा है। तो इस तरह धार्मिक जगत विच ज्ञान नु ते दृष्टि मन लिया गया है, नेत्र मन लिया गया, श्रद्धा नो पैर मन लिया गया, भावना नो पैर मन लिया गया।

श्रद्धा ही नहीं, भावना ही नहीं, भरोसा ही नहीं, चलना औखा है, कठिन है। ज्ञान ही नहीं, समझ ही नहीं, पता ही नहीं, रस्ते दा दिखाई नहीं देता, मंजिल दिखाई नहीं देती, तां भी चलना बड़ा औखा है। धन गुरु नानक देव जी महाराज फरमान कर देने, ऐसे अंधे दुनिया विच घटने जिन्हां नूं बाहर दे रस्ते नहीं दिखाई देंदे, सड़कां ना दिखाई देंदी, ऐसे अंधियां दी तादाद बहुत थोड़ी है। और जिन्हां नूं प्रभु दा मार्ग नहीं दिखाई देंदा, ऐसे अंधियां नाल संसार भरिया पिया, ऐसे अंधियां नाल जगत भरिया। जिहड़े चल ही नहीं सकदे, ऐसे लंगड़े, ऐसे पैरां तो हीणे, मनुख जगत विच बहुत थोड़े ने, बहुत थोड़े ने, गिणती दे हिसाब नाल थोड़े ने, औसतन थोड़े ने, चल नहीं सकदे। इस तरह दे लंगड़े बहुत थोड़े ने, पर जिन्हां कोल श्रद्धा ही कोई नहीं, भावना ही कोई नहीं, भरोसा ही कोई नहीं, ऐसे लंगड़िया नाल संसार भरिया पै, भरिया पै। तो साहब कहने रोला टुंडा अंधला क्यों गल लगे थारे, ये अंधा, ये लंगड़ा, ये टुंडा किस तरह पहुंचे परमात्मा को, किवें पहुंचे। सतगुरु कहिंदे ने मैनू धार्मिक जगत विच मनुख अंगहीण दिखाई देंदे, अंगहीन दिखाई देता, अंग ही कोई नहीं, ना अखा। भाई साहब भाई गुरदास जी के इतने तक कहते हैं अंग अंगहीन, ऐसा नहीं कि एक अंग, देख बे को ना दृष्ट ना दर्श दिखाए देखो, कैसे प्रिय दर्शन देखिए दिखाई है, देख सकिए अखा ही कोई नहीं, दृष्टि कोई नहीं। और जिहड़ी दृष्टि है, जिहड़ियां अखां हैगियां ने, संसार दिखाई देंदा है, निरंकार नहीं, पदार्थ दिखाई देंदा है, परमात्मा नहीं, परिवार दिखाई देंदा है, निरंकार नहीं। देखबे को ना दृष्ट ना दर्श दिखाए देखो, कैसे प्रिय दर्शन देखिए दिखाइए, कहबे को ना सुरत ना सरवन सुनबे को, कैसे प्रिय निध गुण सुनिए सुनाइए। कुछ बोल सका, कुछ कह सका, जवानी कोई नहीं, गूंगा। हे प्रभु तेरे बोल सुन सका, कानी कोई नहीं, बहरा। भाई साहब भाई गुरदास जी बहरा। हे गुरु तेरे बोल सुन सका, मेरे कोल कन नहीं ने, और जिहड़े कन मेरे कोल हैगे ने, इहदे नाल मैं ते परिवार दी गल सुन सकदा तेरी नहीं, मैं संसार दीआं गल्लां सुन सकदा तेरे नहीं, मैं बिखे नाद सुन सकदा तेरा गीत नहीं, मेरे कोल कन ही कोई नहीं। तेरे कन्ना तक मैं अपने बोल पहुंचा सका, मेरे कुल जबान ही कोई नहीं। मनुख कोल जिहड़ी जबान है, वक्त वद इहदे बोल पहुंचदे ने पुत्रां तक, मित्रां तक, परिवार तक। चलो किसे किसे दे बोलां च बरकत आउंदी, उहनां दे बोल राज दरबार तक भी पहुंच जांदे ने, राज घरानियां तक भी पहुंच जांदे। पर जगत विच कुछ ऐसे भी ने जिन्हां दे बोल निरंकार तक पहुंचदे ने, जां का कहा दरगे चले, जिदा कहा होया दरगाह विच भी चलदा है, जिदा बोलिया होया परमात्मा दी दुनिया च भी चलदा है, जिदा बोलिया होया परमात्मा भी सुनदा है, ईश्वर भी सुनदा है। जां का कहा दरगे चले। भाई साहब भाई गुरदास जी कहते ने हे प्रभु मैं तेरे तक अपने बोल पहुंचा सका, जबान ही कोई नहीं, रसना ही कोई नहीं।
तेरे बोलां नूं सुन सकां मेरे कोल कान ही कोई नहीं। कैलीफोर्निया दे भ्रमण करदे आया मैं गुरुद्वारियां च देख के दंग रह गया। दस मिनट किधरे कीर्तन दे ज्यादा हो जाण बैठना बड़ा औखा हो जाता है। दो दो घंटे लंगर हर दिन गप्पां मारदे रहणगे, कोई टाइम ही नहीं देखदा, वक्त ही नहीं देखता। फिर मैनू उत्थे भाई गुरदास जी की पंक्ति चेते आउंदी, हे प्रभु तेरे बोल सुन सकां मेरे कोल कान ही कोई नहीं, तेरे कन्ना तक मैं अपने बोल पहुंचा सकां मेरे कोल जबान ही कोई नहीं। कहदे को ना सुरत न सरवन सुनवे को, कैसे प्रिय निध गुण सुनिए सुनाइए, मन में गुरमत गुरमत में ना मन, नेचल होए मन उन मन लेवल आई है। हे प्रभु जो गुरमत है जो तेरे विचार ने वो मेरा मन कबूल नहीं करता, नहीं मनता, कहिंदा कह पिया मन नहीं मनता। और जिहड़े मेरे विचार ने जो मेरी सोचनी वो तैनू कबूल नहीं, वो तैनू परवान ने। बड़ी कीमती गल कह दी है भाई गुरदास, जो तेरी सोचनी है हे गुरु ये मैनू कबूल नहीं, मैं नहीं मनता। जो मेरी सोचनी है वो तैनू कबूल नहीं, तो रिश्ता किस तरह जुड़े, संबंध किवें जुड़े। मन में गुरमत गुरमत में ना मन, नेचल होए कैसे उन मन लेवल आई है। जो गुरु दी मत है जो गुरु दी सोचनी है जो गुरु दे विचार ने मन नहीं कबूल करता, और जो मन दी मत है जो मेरी सोचनी है जो मेरे विचार ने वो गुरु नूं कबूल ने, तो संबंध किस तरह जुड़े, विचारां दी सांझी नहीं बनदी। गुरु दे विचार मैनू कबूल नहीं, मेरे विचार गुरु नूं कबूल नहीं, मेरे विचारां नाल गुरु सहमत नहीं है और गुरु दे विचारां नाल मैं सहमत नहीं हाँ। भाई साहब भाई गुरदास जी, मन में गुरमत गुरमत में न मन, नेचल होए कैसे उन मन लेवल आईए, अंग अंग भंग रंग रूप कुल हीन दीन, कैसे वो नायक की नायका कहाइए। हे प्रभु जगत विच कोई टुंडा होवेगा, कोई लंगड़ा होवेगा, कोई अंधा होवेगा, कोई बहरा होवेगा, कोई गुंगा होवेगा, पर भाई गुरदास इत्थे कमाल कर देन, मैं ते अंधा भी हाँ, बहरा भी हाँ, गुंगा भी हाँ, टुंडा भी हाँ, लंगड़ा भी हाँ, अंग अंग भंग रंग रूप कुल हीन दीन, कैसे बो नायक की नायका कहाई, किवें मैं तेनू कबूल हो सकदा। अंग अंग भंग सारे अंग टुटे पए ने भंग ने, ना पैर ना हथ ना अखां ना कन ना जबान। अंग अंग भंग रंग रूप कुल हीन दीन, कैसे बो नायक की नायका कहाइए। सारे अंगां दी अपनी एक महानता है, पर रस्ते नूं वेखण वास्ते अखां चाहीदियां, रस्ते ते चलण वास्ते पैर चाहिए। कुछ धार्मिक विद्वान ऐसा भी कहिंदे ने, अगर पैर हैगे ने, श्रद्धा हैगी है, भावना हैगी है, ज्ञान नहीं है, वध तो वध भटकेगा और भटकदे भी कई दफा पहुंच जाते हैं, पहुंच जाते चलते पे किसी दिन भटक भटक के भी पहुंच जाएंगे। हुणे थानूं भाई साहब भाई सुरजीत सिंह जी जो बहुत सोहणे आलम ने गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की संपादना बारे दस रहे सन। भगत सूरदास ये बिंद्राबन तो चलिया सी, इस शौक नाल मेरे बोल भी गुरु ग्रंथ साहब विच दर्ज होवन, उहदी इक पंक्ति दर्ज है सारंग राग विच। अंधा सी नेत्रहीन, हुण बिंद्राबन तो अमृतसर तक पहुंचे किवें, पर उसका हौसला देखो, लाठी लेके चल पिया, पुछदा ही पुछदा, किधरे भटक जांदा सी लोकी रस्ते ते पा देंदे सी। मतवा

0: ठीक हैं, भाई गुरदास गलत है। मैं कहा भाई गुरदास के कहने का भी यही अर्थ होगा, दिमाग घुमा देता। तीजे दिन उन्होंने कथा की समाप्ति की थी, कहन लगे हजूर साहब चलना है। हजूर साहब का कोई प्रोग्राम नहीं सी, उदों उतों वैद्यनाथ धाम जाना सी, फिर कलकत्ते जाना सी, फिर पटना साहब पहुंचना सी। अचानक कहन लगे हजूर साहब जाना। मैं ठीक है, औरंगाबाद उतरे, उतों टैक्सी पकड़ी, हजूर साहब ले। हजूर साहब 40 मील रहिंदा है, रस्ते दे च कस्बा पैंदा है औंडा। ड्राइवर नूं कहण लगे इधर मुड़। मैं कहा बाबा जी हजूर साहब तो उस पासे सीधा रोड ते हो जा रहा है। कहण लगा तेरी अकल फिरानी है, इस वास्ते आया। औंडे गए, वो मंदिर देखिया। कहण लगे हुण देख इस मंदिर नूं, देख ये रबड़ का बनया हुआ कि पत्थर का बनया है मंदिर, ये खिडौना है कि असली मंदिर है, पहाड़ नूं तराश के बनाया गया, फिरिया हुआ है कि नहीं। मंदिर का मुंह दूजे पासे, मूर्तियां का मुंह दूजे पासे, और ब्राह्मण आप साथी सुनांदे ने। फिर जिथे बाहर बैठ के कीर्तन कीता सी नामदेव ने, उत्थे हुण थड़ा भी बना दिता है। हुण ब्राह्मण मनदे ने, हुण ब्राह्मण भी उस थड़े नूं मत्था टेकदा। देख के मैं फिर भी बाबे उन्होंने यह आखी, अकल तो अगे की गल है। मैनू कहन लगे अकल तो अगे की गल है तो सच, पर तू बेअकली नाल कह रहे हैं। यह भी अजे तक मैनू याद है। यह गल तो ठीक है कि अकल तो अगे की गल है, परमात्मा अकल तो अगे की गल है, प्रभु का रस अकल तो अगे की गल है, परमात्मा की होंद अकल तो अगे की गल है, पर जिहड़ा तू कह रहे हैं बेअकली नाल कह रहे, तू अकल तो अगे नहीं गया। अगर अकल तो अगे चला जाता तो शायद खेड बन जाती, तेरी गल समझ आ जाती। फिर जब मैं भाई नंद लाल नूं पढ़ना शुरू किया तो मैं हैरान होया। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज एक दिन प्रसन्नता दे घर दे चाहे, बख्शिश दे घर दे चाहे, ते कहन लगे नंद लाल बहुत खुश हाँ तेरे ते, तू बहुत प्यारा लगदा है, बहुत प्यारा लगदा। अज मैनू होर खुशी होवेगी, तेनू कुछ दें, तेनू कुछ दें जो बहुत प्यारा होवे, बहुत प्यारा होवे देन नू जी करदा। जिहदे नाल बड़ी करड़ी दुश्मनी होवे उहदा ते कुछ खो लैण नूं जी करदा है, जिस नाल करड़ी दुश्मनी होवे जी करदा है इहदा सुख खो लईए, इहदी इज्जत लुट लईए, इहदा मान सन्मान खो लईए, मौका लग जाए इहदी जिंद जान खो लईए। दुश्मनी है, बहुत प्यारा लगदा है, बहुत प्यारा लगदा है, देण नूं जी करदा है, सुख दे दईए, आराम दे दईए, सन्मान दे दईए, किधरे लोड़ पै जाए तो अपनी जिंद जान दे दईए। सतगुरु कहिंदे ने तूं मैनूं बहुत प्यारा लगदा, बहुत प्यारा लगदा, तैनूं अज मैं कुछ देना है क्योंकि दे के मैनूं खुशी मिलेगी, पर ऐसा ना होवे मैं जिहड़ा तैनूं देवां वो तेरी लोड़ ना होवे, तेरी मंग ना होवे। इस वास्ते तू मंग ते मैं दें, जो तू मंगे वो मैं देना। पता है नंद लाल ने की आख्या, महाराज इस दर ते पहले मंगता ही आया सी, मंगा नाल भरिया हुआ, हर वक्त मंगा ही सन, हर वक्त कामनावां ही सन। पातशाह जद मैं इस दर ते आया सी, मंगते दी तरह आया सी, मंगा सारियां खत्म हो गई, अज मैं बादशाह हो गया, अज आप कहिंदे हो मंग लो, अज आप कहिंदे हो मंग लो। गदाए कुवे तोरा मेले बादशाही नेस्त, ਹਵਾਏ ਸਲਤਨਤ ਵਜ਼ਾਉ ਕੇ ਕਜ ਕੋ ਲਾਹੀ ਨੇਸਤ। ਐ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲੀ ਚੋਂ ਲੰਘ ਜਾਏ, ਉਹ ਦੋ ਜਹਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਠੁਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਦਰ ਮਲ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ। ਅੱਜ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕੁਛ ਮੰਗ ਲਓ, ਕੁਛ ਮੰਗ ਰਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਖੁਦਾ ਸੇ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਖੁਦਾ ਕੋ ਮੰਗ ਕਰ, ਉੱਠਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਇਸ ਦੁਆ ਕੇ ਬਾਅਦ। ਦੁਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ। ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਕਹਿੰਦੇ, ਖੁਦਾ ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਮੰਗਾਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੰਗਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਮਿਟ ਗਈਆਂ। ਸਭ ਕੁਛ ਖੁਦਾ ਸੇ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਖੁਦਾ ਕੋ ਮੰਗ ਕਰ, ਉੱਠਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਇਸ ਦੁਆ ਕੇ ਬਾਅਦ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹੋਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਨੰਦ ਲਾਲ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇਈਏ। ਚਲ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਮੰਗ ਲੈ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਾਤਾ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੇ ਪੁੱਤ ਖਾਏ, ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੀ ਪੁੱਤ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁੱਤ ਪਿਆ। ਮਾਤਾ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੇ ਪੁੱਤ ਖਾਏ, ਖੁਸ਼ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਪਿਆ, ਸਵਾਦ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਖੁਸ਼ ਮਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਨੰਦ ਲਾਲ, ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਮੰਗ ਲੈ, ਕੁਛ ਮੰਗ ਲੈ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਮੰਗਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ। ਯਾ ਇਲਾਹੀ ਈ ਦਿਲ ਮਰਾ ਸ਼ੌਕ ਦੇ, ਜੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਸ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰ ਦੇ, ਰੱਬੀ ਸ਼ੌਕ ਦੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ, ਭਾਵਨਾ ਦੇ। ਯਾ ਇਲਾਹੀ ਈ ਦਿਲ ਮਰਾ ਸ਼ੌਕ ਦੇ, ਦਰ ਗਲੋ ਅਜ ਬੰਦ ਗੀਰਾ ਤੌਕ ਦੇ। ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਮ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਪਟੇ ਨੂੰ ਤੌਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਤੌਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਬੇਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਤੌਕ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਕਬਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਤਨੇ ਤੌਕ ਬਣਾਉਣੇ ਬੜੇ ਔਖੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਉਸਨੂੰ ਰੱਖਣੀ ਪਈ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਇੱਥੇ ਮੋਂਡੇ 'ਤੇ ਦਾਗ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਗ ਨਾਲ। ਕਬੀਰ ਨੇ ਉਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਦਾਗੇ ਹੋਏ ਸੋ ਰਣਮੇ ਜੂਜੇ, ਬਿਨ ਦਾਗੇ ਭੱਗ ਜਾਈ। ਦਾਗ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦਾਗੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਵਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗਲੇ ਦੇ ਤੌਕ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਟਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਵਿਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਤਨੀ ਇਹ ਆਮ ਬਾਬਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਤਨੀ ਇਹ ਆਮ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਸੁਭਾਵ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਗੁਲਾਮ। ਲਾਲਾ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਲਾਲੇ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਗੁਲਾਮ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਦ ਗੁਲਾਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਫਗਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਲਾਲਾ ਲਾਲਾ ਲਾਲਾ, ਗੁਲਾਮ ਗੁਲਾਮ ਗੁਲਾਮ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਲਾਮ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਲਾਮੀ ਇਤਨੀ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਈ, ਇਤਨੀ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਲਾ ਜੀ ਲਾਲਾ ਜੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਲਾਲਾ। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते मुल खरीदी लाला गोला, ए प्रभु मैं तेरा खरीदे होया, तेरा मुल खरीदे होया गुलाम, बड़ा मैं भागा वाला तेरा गुलाम, किसे होर दा नहीं तेरा गुलाम। कहो कबीर गुलाम घर का, जे आए भावे मार भगत कबीर, हे प्रभु तेरी मर्जी असी ते तेरे गुलाम, तेरे गुलाम। मुल खरीदी लाला गोला, मेरा नाम सवागा, गुर की बचनी हाट बिकाना, जितला आया तितलागा। असी ते गुरु दी दुकान ते अपने आप नु वेच दिता है, सतगुरु ने कहने वेच दिता, खरीदे गए गुलाम। भाई साहब भाई नंद लाल कहने, या इलाही ई दिल मरा शौक दे, ऐ मेरे इलाही ऐ मेरे गुरु, देना है ते शौक दे, श्रद्धा दे, प्यार दे। या इलाही ई दिल मरा शौक दे, दर गलो अज बंदगी रा तौक दे, मेरे गले विच बंदगी दा पट्टा पा दे, गुलाम बना दे। दर गलू अज बंद गेरा तौक दे। अगां चल के हथ जोड़ के भाई साहब भाई नंदलाल कहंदे ने, या इलाही चश्मे बीना ए बिदे, ओ अखां दे जिहड़ियां परमात्मा नूं वेख सकदियां, ऐ ते मेरे कोल हैगियां ने, ये ते जन्म तो मिलियां ने। ओ अख जिहदे नाल परमात्मा मिलदा दिखाई देंदा है, वो जीवन तो मिलती है, साधना तो मिलती है, तपस्या तो मिलती है, भगती तो मिलती है, उन्हें नहीं मिलती, ये तो जन्म तो मिली है, इन्हां दी ते असी कोई कीमत नहीं चुकाई है। इस वास्ते मनुख इन्हें अखां दी इतनी कदर भी नहीं करता। कहिंदे ने मनुख हत्थां नूं भी साफ रखता है, पैरां नूं भी साफ रखता है, अखां नूं ते मैला रखता है, नजरां ते मैलियां आउंदियां ने, अखां की इतनी परवाह नहीं करता कि अखां इतनी मैलियां, और अखां की मैल बड़ी दूर तक जाती है। अखां की मैल सिर्फ मनोविज्ञानक या थोड़े जिहा संत भगतां नूं दिखाई देती है। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने देख लिया सी, ये जो सारा दिन पानी पिलांदा है, सेवा करता है, ये सेवक नहीं है, भगत नहीं है, ठग है, यदि अखां दस रही सज्जन ठग, सिर्फ दिखाई देता सज्जन, सिर्फ नाम इसका सज्जन है, लेकिन ठग है, यदि अखां दस दी पी नजर दस दी पी हो हथा नाल सेवा करता पे, अखां मैलिया है, मैलिया नजर नाल सेवा कर दे। मैं गुरुद्वार च भी देखे गुस्ताखी माफ औखे नाम, मैलियां अखां वाले मैं मंदिरां दे की सेवा कर दे, दे। अखां ते मैलियां उन सेवादार ने, अखां ते मैलियां ने, इन्हां अखां नूं मनुख इतना संभाल के नहीं रखता कि मैलियां ना हो, हाथ भी धो लैंदा है, पैर भी धो लैंदा, अखां भी साफ कर, इन्नियां मैलियां इतनियां मैलियां, सियाने कह देंदे ने इहदी अख मैली है, ठीक नहीं है। सतगुरु नानक देव जी महाराज इस नूं इंज कहंदे ने, दृष्ट बिकारी बंधन बांधे हां तां कहि बल जां, जिहड़ा अपनी अखां नूं धो लैंदा है, निर्मल कर लैंदा है, सब कुछ साफ दिखाई देंदा है, मैं उस तों सदके जाना, कुरबान जाना, गुरु नानक देव जी मैं उस तों बलहारने जाना, है लमकाई गया ना। भाई साहब भाई नंद लाल कहंदे ने, या इलाही चश्मे बीना ए बिदे, ऐ मेरे इलाही ओ अखां दे जिहड़ियां परमात्मा नूं देख सकदियां। फिर दूसरी पंक्ति ते कमाल कर दिता है, या इलाही चश्मे बीना ए बिदे, दर सरम अद इश्क सौदा ए बिदे, इस सिर दे ओ इश्क दे ओ शरदा दे ओ भावना दे कि सारे कह दिन नंद लाल पागल है पागल है पागल है, ऐ मेरे गुरुदेव अजे ते लोकी मैनू ज्ञानी कहंदे ने, विद्वान कहंदे ने, कवि कहंदे ने, शायर कहंदे ने, आलम फाजल कहंदे ने, मैनू अजे किसी ने पागल कहना शुरू नहीं किया। ਭਗਤ ਪਾਗਲਾਂ ਜੈਸੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਤਰਜ਼ੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਗਤ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਭਗਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਜੋੜ ਕਦੇ ਨਾ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਭਗਤ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਸੰਤ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਫਕੀਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਭਗਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਜੋੜ ਕਦੇ ਨਾ ਆਇਆ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸੰਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਗਾਥਾ ਹੈ ਪੰਚਦਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਬੋਧ ਭਿਕਸ਼ੂ ਜੋ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਸੜਕ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜੋ ਲੋਕ ਉਸਨੂੰ ਭਿਕਸ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਉਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਉਪਜੀਵਿਕਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਵਕਤ ਦਾ ਰਾਜਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਰੱਥ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਸੀ, ਰਾਜ ਮਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਦੇ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਭਜਨੀਕ ਬੜਾ ਹੈ, ਲਿਵਲੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਵਕਤ ਸੁਰਤ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਦਾਵਤ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਰਹੇ, ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨ, ਅੱਠ ਦਸ ਦਿਨ। ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਲਿਆ ਬਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਵਾਂਗਾ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਝੁੱਗੀ ਕੋਲ ਇਸਨੇ ਰੱਥ ਰੁਕਵਾਇਆ, ਉਤਰਿਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਸੰਤ ਜੀ ਕੁਛ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ 'ਚ ਰਹੋ, ਕੁਛ ਦਿਨ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਇੱਕਦਮ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ। ਰਾਜੇ ਦੀ ਅੱਧੀ ਸ਼ਰਧਾ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ, ਕਿਤੇ ਨਾਜ ਨਖਰੇ ਕੁਝ ਕੀਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾਜ ਨਖਰੇ ਕਰੇ ਨਾ ਅਗਲਾ ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਨਖਰੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਾਲ ਸਰਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਬੜੇ ਬਿਖਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਿਖਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਰਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਪਰ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਹੈਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਸੇ ਹੀ ਉਡੀਕੇ ਸੀ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਦਾਵਤ ਦੇਵਾਂ ਅਤੇ ਚਲੀਏ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਸੇ ਉਡੀਕੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਰਾਜਾ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦਾਵਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਵੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਤੋਹੀਨ ਸਮਝੀ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰਧਾ ਉਸਦੀ ਅੱਧੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਰੱਥ 'ਚ, ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਮਾਨ ਖਾਨਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਕਵਾਨ ਉਹ ਖੁਦ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਸਾਧੂ ਨੇ ਉਹੀ ਖਾਧੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬਸਤਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਿਲਵਾਏ ਸਨ ਉਹ ਦਿੱਤੇ, ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਨ ਲੈ ਤੂੰ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਹਿਨਦੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਸੇਜਾ 'ਤੇ ਉਹ ਸੁੱਤਾ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਪਕਵਾਨ, ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਰੋਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਰਾਜਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਰਾਜਾ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਸ ਪਿਆ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸੰਤ ਨੂੰ ਦਿਸ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਅੱਖਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਨਾ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਬਰਾਬਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਜੋ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਨਣ, ਜੋ ਮੈਂ ਖਾਧਾ ਹੈ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਧਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਜਾ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ। ਜੋ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਸੰਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਦੱਸਾਂਗਾ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, बाहर जाते। प्राचीन गाथा है, पुरानी कथा है, राजा भी बड़ा उतावला सी, चलो दसेगा, कहते चलो फिर बाहर चलो। पुराने रजवाड़े होंगे सन, छोटियां छोटियां जगीर, अठ दस पिंडां दा रजवाड़ा। महात्मा बुद्ध दा पिता कपल वस्तु दा राजा सी, ऐती चाली पिंड सन छोटे छोटे, और कुछ भी नहीं सी। गालबन तीन चार फरलांग जब चले, राजा कहिंदे दसो बहुत दूर आ गया, तुहाडे साडे च फर्क की है? संत कहिंदा अगे दसांगे, अगे दसांगे। पूरा मील चल रहा हूँ, राजा फिर पुछदा हूँ ते दसो, मैं ते चल के थक गया, मैं कदी इतना चलिया नहीं, तुसी बहुत मैनू चला लिया, हूँ ते दसो। संत कहिंदा दसांगा अगे। दो मील दी वाट तय हुई, इतना कदी चलिया नहीं सी राजा, रथ ते सवारी करदा सी। आखन लगा संत जी हुण ते दसो, कहन लगे थोड़ी दूर होर चलदियां दसांगे। राजे दा हौसला बन गया, चलदियां चलदियां थोड़ी दूर ते राजा रुक गया। कहिंदा संत जी हुण ते दसो, संत कहिंदे नहीं अगे, राजा कहिंदा मैं अगे नहीं जा सकदा, मेरे राज दी सरहद इत्थे खत्म हो जांदी, मैं अगे नहीं जा सकदा, मेरी स्टेट इत्थे तक है, मेरा राजपाठ इत्थे तक है, मेरा राजपाठ पिछे रह गया, मेरे महल पिछे रह गए, मेरा परिवार पिछे रह गया, इत्थे हद खत्म होंदी है। संत कहण लगा तेरे ते मेरे च यही फर्क है, तेरे महल पिछे ने, मेरे अगे ने, तेरा सब कुछ पिछे है, मेरा सब कुछ अगे है। जिथों तेरा सब कुछ खत्म होता है, उस जगह तो मेरा सब कुछ शुरू होता है। जा तेरे महल छड़े, कपड़े उतार के परे सुट दिते, आपां चले अगे, तो तेरे मेरे च ही फर्क है। तू अगे नहीं आ सकता, पिछे मुड़ सकता है, असी पिछे मुड़दे ही नहीं आते, अगां जांदे होंदे। अगां कु तरांग, पिछा फेर ना मोड़ा, नानक सिंह एहया वार, बहुड़ ना होवी जन्मड़ा। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहिंदे ने क्यों पिछे सुरत नूं मोड़दा है? बंदा आ गया गुरुद्वारे, सुरत पिछे कारोबार जा रही है, कम से कम एक घंटे लई ते सुरत नूं अगे रख, शब्द दे नाल जोड़, एक अद्धे घंटे लई ते कर। इत्थे आके भी तेरी सुरत पिछे परिवार दे च, कारोबार दे च, घर दे च, सुरत पिछे जांदी है, अगे नहीं जांदी। साहिब कहिंदे ने अगां को तरां, पिछा फेर ना मोड़ा, पिछे ते साडा संसार है, अगे निरंकार, पिछे ते साडा परिवार हो सकदा, करतार ते अगे, पिछे ते साडा कारोबार है, निरंकार दी दुनिया ते अगे। अगां को तरां, पिछा फेर ना मोड़ा, नानक सिंह एह आवार, बहुड़ ना होवी जन्मड़ा। भाई साहब भाई नंद लाल कहिंदे ने ऐ मेरे पातशाह, या इलाही चश्मे बीना ए बिदे, दर शरम अज इश्क सौदा ए दे। ओ प्यार दे, ओ इश्क दे, ओ भावना दे, ओ शरदा दे। एक दफा सारे कह दिन नंद लाल सुदाई हो गए, पागल हो गए। महाराज अजे ते लोकी मैनू कवि कहिंदे ने, शायर कहिंदे ने, विद्वान कहिंदे ने, आलम पागल कहिंदे ने, पंडित कहिंदे ने, महाविद्वान कहिंदे ने, मैनू किसी ने पागल कहना नहीं शुरू किया। हैरानगी दी गल, चोटी दा स्याणा मनुख ये कह रहे हैं। इस दौर दे शरदालू होना बड़ा औखा हो गया, बहुते शरदालू नूं लोकी पागल कहण लग पैंदे, बहुते शरदालू नूं लोकी भोला कहण लग, औखा होना। निक्की निक्की गल ते शरदा टुट जांदी है बंदियां दी, बहुत छोटियां छोटियां गल्लां। हजारां दफा रब दी कथा सुणी होवे, गुरबाणी दी विचार सुणी होवे, किसी माड़ी जी शरदा बनती है, एक मनुख की किधरे दो बोल अशरदा बरे सुन लीए, शरदा टुट जाती। की शरदा है मनुखां दी? कुछ भी नहीं, कच्ची कंध ते खड़ी है। तो लवस बनी बनाई श्रद्धा नूं तोड़ के रख देंदे। इत्थों ही पता चलता है मनुख कोल श्रद्धा एवें कच्ची कंध वर्गी है, कलरी कंध वर्गी है, कुछ भी नहीं, माड़ा जिहा धक्का दिता ते गई। मैं फिर दोहरावां, इसका खुलासा मैं कल करन दी कोशिश करांगा, समा हो गया। रस्ता वेखण वास्ते अखां चाहीदियां, दृष्टि चाहीदी है, रस्ते ते चलण वास्ते पैर चाहीदे। दृष्टि ज्ञान है, समझ है, अकल है, श्रद्धा पैर ने, भावना पैर है, प्यार पैर ने। पेंडा प्यार नाल तय होंदा, श्रद्धा नाल तय होंदा, अकल नाल नहीं। अकल नाल पेंडा दिखाई देंदा, मंजिल दिखाई देंदी। हुण मैं फिर अर्ज करा, पैर नहीं ने, श्रद्धा बिल्कुल नहीं है, भावना बिल्कुल नहीं है, प्यार बिल्कुल नहीं है। भावें चोटी का ज्ञानी होवे उरार ही रह जाएगा, कुछ भी नहीं, हिरदा भी कठोर होगा, बड़ा कठोर होगा। 5000 साल तक ब्राह्मणा ने जो चोटी दे विद्वान सन, शूदरां लई मंदरां दे दरवाजे बंद रखे। बड़ा चोटी का विद्वान काजी सी सूबा सरहन दे कोल, उसने बुलाया सी फैसला करने वास्ते मासूम बच्चियां दा। काजी दा फतवा ते लाजमी सी, बगल दे कुरान, कुरान पूरी कंठ हाफिज सी, अर्थ बोध आउंदा सी, हदीसां पढ़ांदा सी, बड़ा विद्वान चोटी दा, हथ दे तस्बीह। जब सूबा सरहंद ने यह आख्या, इस्लाम यह कहिंदा, मुहम्मद साहब यह कह रहे ने कि तेरे हथों किसी नाबालग बच्चे दा और औरत दा खून जमीन ते नहीं डोलना चाहिए, खुदा माफ नहीं करेगा। तो वो नवाब काजी नूं कहिंदा की करिए, की करिए, इन्हां बच्चियां दा की करिए। काजी कहिंदा खून डोलण दी की लोड़ है, को नहीं डोलदे, इन्हां नूं जिंदा ही दीवार दे चिण दो, गल खत्म। एक काजी फैसला करदा, बड़ा विद्वान, बड़ा विद्वान, बड़ा पंडित, बड़ा पढ़ा लिखा। रस्ते ते चलण दी तौफीक कोई नहीं, श्रद्धा ते है ही कोई नहीं, भावना ते है ही कोई नहीं, प्रेम ते है ही कोई, संबंध ते प्रेम नाल जुड़दे ने। बड़े बड़े ज्ञानी कोरे रह जांदे ने संबंध नहीं, बड़े बड़े दार्शनिक फिलोसफर चिंतक बुलारे लिखारी में पत्थर दिल देखे ने, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। रस्ता वेखण वास्ते अखां चाहीदियां ने, रस्ते ते चलण वास्ते पैर चाहीदे ने। हुण मैं फिर अर्ज करां, पैर नहीं है इह ते चल ही नहीं सकदा, उत्थे बैठा रहेगा, दूजे दे पैरां नाल नहीं चलिया जांदा। पर पैर हैगे ने, अखां नहीं। यकीन जाने भटकदा भटकदा किसी दिन पहुंच सकता है, सूरदास अमृतसर पहुंच गया सी, गुरु दे चरणां च पहुंच गया सी, भटक भटक के बाहर दी अखां इसदे कोल नहीं सन। जे बाहर दी अखां नहीं है, तो बाहर भटक भटक के मनुख बाहर दा रस्ता तय कर सकदा है। चलो अंदर दा ज्ञान परमात्मा दा नहीं है, सूझ समझ परमात्मा दे नहीं है, सिर्फ भावना प्यार ते श्रद्धा है, यकीन जाने पहुंच जाता है, मनुख पहुंच जाता है। किस नूं मैं फिर थोड़े सामने खोलांगा, चार दिन मैं होर हाजरी भरनी है, रात देव कदाट तो नौ थोड़े चरण परसांगे, उहदे विच खोलण दी कोशिश करांगे। इत्थे ही समाप्ति भुल चुक दी समा, सतगुरु रहमत करन, बख्शिश करन थोड़े हिरदे दे, प्यार दी सौगात पावन, श्रद्धा दी सौगात पावन, ईश्वर दा भरोसा ते भावना पैदा होवे, ना भी होया ते ज्ञान कोई बहुत वड्डी गल नहीं, श्रद्धा पहुंचा देंदी, भावना हिरदे नूं रस नाल भर देंदी है, प्यार हिरदे नूं अंदोलित कर देंदा है। और साफ कह दिता कलगीधर पातशाह, साच कहो सुन ले हो सवे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। गुण ए तो बृंद बरात जनावर, एक बैराग बिना सब ठीक है। भरतरी कहिंदा है, बंदा ज्ञानी है, दानी है, बड़ा कुछ करदा है, प्यार नहीं है, इहदा सब कुछ इंज है। ओ बरात जिहदे च लाड़ा ही कोई नहीं, लाड़ा ही कोई नहीं, इस बरात दे की मैंने रख, की मैंने रख दी बरात, लड़ाई कोई नहीं। एक बैराग बिना सब ठीक है, एक रब्बी प्यार तो बिना सब फिक्के ने, सारा ज्ञान फिक्का, सारा ध्यान फिक्का। सारी सेवा पिकी दान दे चो भी हंकार की बू आवेगी, निरंकार की झलक नहीं पैदा होगी। साहब रहमत करन साड़ी शरदी जो है झोली नु श्रद्धा नाल भरन, भावना नाल भरन। एदा खुलासा फिर पुल चुक दी शमा फतेह प्रोम करनी। वाहेगुरु जी का खालसा।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington. 1550 AM Gurbani segment is brought to you in memory of Sardar Ajit Singh Baad and Sardarni Surinder Kaur Baad. 1550 Radio de utte Gurbani de kise vi program nu sponsor karna chahunde ho ta call karo 604-900-7790.
2: ਜਾਪੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਫਰੂਟੀ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋਲਸੇਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹਨ 18 ਸਪਟੈਂਬਰ ਤੋਂ 23 ਸਪਟੈਂਬਰ ਤੱਕ। ਲਾਲ ਗੰਡੇ 25 ਪਾਉਣ ਦਾ ਬੈਗ 17.98 ਦਾ ਅਤੇ ਪੀਲੇ ਗੰਡੇ 50 ਪਾਉਣ ਦਾ ਬੈਗ ਲਵੋ 18.98 ਦਾ। ਬੀਸੀ ਲੰਬੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ 51 ਨੂੰ ਪਾਉਂਡ, ਬਿਨਾਂ ਬੀਜ ਵਾਲਾ ਹਦਵਾਣਾ 58 ਸੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਾਉਂਡ ਅਤੇ 4 ਪਾਉਂਡ ਧੋਤੀ ਹੋਈ ਉਰਦ ਦਾਲ ਅਤੇ ਮੂੰਗ ਦਾਲ ਲਵੋ 4.99 ਦਾ ਬੈਗ।
3: ਪੰਜਾਬ ਫੋਰੈਕਸ ਗਗਨ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰੁਪਈਏ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜੇ ਰੁਪਈਏ ਬਾਫਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਡਾਲਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਗਗਨ ਸਿੰਘ 604-349-1313 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੁਪਈਏ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਿਓ। 6043491313 ਯੂਨਿਟ 103-8140-120 ਸਟਰੀਟ ਸਰੀ 6043491313 604-349-1313 ਗਗਨ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਫੋਰੈਕਸ ਦਾਵਾ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਪੱਕਾ।

ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ। ਵੇਖ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਆਪ ਇਤਨੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਉਮਰ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਬਿਰਧ ਹੈ, ਇਹ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚਾ, ਉਮਰ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਵੇਖ ਕੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਵੇਖ ਕੇ ਰੰਗ ਰੂਪ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਵੇਖ ਕੇ ਇਤਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਗੋਰਾ ਹੈ, ਕਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਂਵਰਾ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਕੈਸੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਹੈ, ਰਜੋ ਗੁਣੀ ਹੈ, ਤਮੋ ਗੁਣੀ ਹੈ, ਸਤੋ ਗੁਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਅਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਹੈ, ਸੁਖੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮਰਦ ਏ ਸੁਖਨ ਨਾ ਗੁਫਤਾ ਬਾਸ਼ਦ, ਐਬੋ ਹੁਨਰ ਨੇ ਹੁਫਤਾ ਬਾਸ਼ਦ। ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ 5-10 ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੋਲ ਚਾਲ ਨਾ ਸੁਣੀਏ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਹੈ। ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਧੋਖਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਰੰਗ ਰੂਪ ਤੋਂ ਧੋਖਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਲੱਗਦਾ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਬੋਲਚਾਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੋਂਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ, ਬੋਲਚਾਲ ਤੋਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਕੜਿਆ ਤੇ ਸਮਝਿਆ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਮੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਮੱਲਾ ਦੂਜਾ, ਮੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਮੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਮੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਕਾਨ ਨੂੰ, ਸ਼ਬਦ ਮਕਾਨ ਬਦਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ, ਮੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਫਿਰ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਸੋਚਣੀ, ਸ਼ਬਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਜੋ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣ ਲਵੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਸਮਝ ਜਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਬਾਹਰ ਦਾ ਧਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ੂਮਪਣਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਧਨਵਾਨ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਬਰਾਬਰੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਨੰਬਰ 2 'ਤੇ। ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਐਸਾ ਧੱਕਾ ਮਾਰੀਏ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਇਸਨੇ ਪੁੱਟਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਹੋਰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਜਿਸ ਜ਼ੀਨੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਜ਼ੀਨੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ, ਦੂਜਾ ਨਾ ਚੜੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਜ਼ੀਨੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਇੱਕ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਜ਼ੀਨੇ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣ, ਹੋਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ। ਜੋ ਮੈਂ ਜਾਣੇ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਜਾਣ ਲਵੇ, ਨੌਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਭਰਮਣ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ, ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਂ ਜਾਣੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਾਣ ਲਵੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਰਸ ਮਾਣਿਆ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਸ ਮਾਣ ਲੈਣ, ਜੋ ਆਨੰਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਣ ਲੈਣ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਤੋ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰੀਰ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਤਨ ਚਾਹੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦਾ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਤਨ ਨੂੰ ਕਾਲ ਖਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਾਲ ਪਾਏ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਵਦਰਾ, ਕਾਲ ਪਾਏ ਸ਼ਿਵਜੂ ਅਵਤਾਰਾ, ਕਾਲ ਪਾਏ ਕਰੇ ਵਿਸਨ ਪ੍ਰਗਾਸਾ, ਸਕਲ ਕਾਲ ਕਾ ਕਿਉ ਤਮਾਸਾ,
समय दे जो कुछ बने है मिटेगा। शरीर समय दे बने है, काल दे बने है। इस वास्ते गुरु घर दे कह दिता, शरीर गुरु नहीं है तो मिट जाता है, फिर की करोगे, फिर की करोगे। शब्द लंबे समय तक कम करे, उसे शब्द नूं प्रवेश करा दिता गुरु नानक ने लेने दे अंदर। वो धन गुरु अंगद देव जी महला दूजा, मकान दूजा है। वो शब्द हुण दूजे मकान दे, तीजे मकान दे, चौथे मकान दे। जोत ओहा जुगत सहकाया फेर पलट गए। श्री कृष्ण प्रगट होए गीता दे राहीं। गीता ने एक पासे कर दो, कृष्ण की होंद नहीं प्रगट हो सकती गुस्ताखी नाल। हर मनुख अपने बोल दे प्रगट होंदा है, परमात्मा तक बोल दे प्रगट होया शब्द दे। कुरान दे राही मोहम्मद साहब प्रगट होए। ना निकल दी कुरान ते पता नहीं कितने संत भगत इस दुनिया च होए। और केते तुदनु गावन से मैं चेतना आवन, नानी क्या विचारे हे प्रभु, पता नहीं कितनिया ने तेनू गावे है, तेरे नाल जुड़ गए, मुक्त भी होए, पर उन्हां दे कदमां दे निशान जमीन ते नहीं बने, कुछ बोले ही नहीं। परमात्मा दे शब्द नू प्रगट ना कर सके, शब्द दा आनंद माण सके, शब्द नाल जुड़ के मुक्त हो गए, पर शब्द नू उस अनुभव नू प्रगट ना कर सके। जिहड़े प्रगट कर सकते हैं अवतार श्रेणी च, वो आ जाते हैं। फिर भारत के ऋषि मुनिया ने वंड की थी, चार कला अवतार है, अठ कला अवतार है, अंसा अवतार है, अंश मात्र है। अपने बोलों के राही किसी ने थोड़ा प्रगट किया, किसी ने बहुत प्रगट किया, किसी ने बहुत प्रगट किया, कोई 16 कला अवतार है। अवतार मैं फिर अर्ज करा, परमात्मा तो शब्द होया, शब्द तो संसार होया। वो शब्द की है जिस तो संसार होया है, संसार आया है, तो जिस शब्द दे राही संसार आया है, संसार उसे ही शब्द दे राही वापस भी जाएगा। उत्पत परले शब्दे होवे, जो उत्पत्ति उस तो ही है तो परले भी उस तो। जिस दरवाजे दे राही तुसी गुरुद्वारा साहब दे अंदर आए हो, इसी दरवाजे राही बाहर जाओगे। और की शब्द तो संसार आया है, शब्द दे राही वापसी होएगी संसार दी, आज नहीं कल। 100 साल बाद, 1000 साल बाद, करोड़ां अरबां साल बाद पत्थर भी एक दिन जानगे, परम नूर बनेंगे, मिट्टी बनेंगे, वनस्पति बनेंगे, पशु पक्षी बनेंगे, फिर मनुख बनेंगे, फिर किधरे जाके साधना तपस्या करके फिर परमात्मा दे परमात्मा होंगे। सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थी आराम। जिस शब्द दे राही संसार आया है, उसे दे राही वापस करना। उस शब्द की रूपरेखा भी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, गुरु नानक, भगत कबीर सारे संत जन दसते ने। ओंकार ओंकार एक धुन उपजे एको राग अलापे। गुरु अर्जन देव जी महाराज, ओंकार आदमे जाना लिखिया रमेटे ताए न माना, भगत कबीर। ओंकार आद कथने अनाद, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। खैर मुख्तसर में अर्ज करा, गुरु नानक ने ते एका तक ला दिता, एक यही शब्द है ओंकार, जिस तो जगत आया, जिस तो संसार आया। एक ओंकार, दूजा नहीं। बाणी भी पूरी रच दी, उस बाणी का नाम भी है ओंकार। ओंकार ब्रह्मा उत्पर, ओंकार किया जनचित, ओंकार सैल जुग भय, ओंकार वेद निर्मय। मनुख प्रगट होंदा है अपने शब्दां दे राही, परमात्मा प्रगट होया है अपने शब्द दे राही। असी जो बोलां राही प्रगट होंदा है, इनू आहत शब्द कहंदे ने। आहत चोट तो जिहड़ी आवाज पैदा होवे, दो वस्तुआं दी चोट तो, पवन मास नाभी नाल टकरांदी है, आवाज बनती है, धुन बनती है, अखर बन के जबान बार प्रगट कर देती है।
दो चीजां दे टकराव तो जिहड़ी आवाज पड़े साडे कन्न जो कोई सुनदे ने आहत शब्द है, आहत कहिंदे ने चोट नूं। परमात्मा दा शब्द किसे चोट तो नहीं पैदा होया, उस तो स्वयं पैदा होया, इस वास्ते उस नूं अनाहत कहिंदे ने। और वो शब्द व्यापक है, तेह लोकां में शब्द रव्या है, आप गया मन माने। उस शब्द दे वो शब्द संगीतमयी है, रागमयी है। संगीत नूं गा के प्रगट किया संगीतकारा ने वख वख साजा दे राही, और ये साज सारे दे सारे पंज श्रेणियां विच आ जांदे ने, पंज तरह के तत्, वित, घण, नाद, सुगर। तत् तंती वित चरम का घण का सी का जान, नाद शब्द घट को कहें सुगर श्वास पहचान। तंती साज सितार है, दिलरुबा है, बीना है, उंगलियां दे टकराव तो, लोहे दे टुकड़े दे टकराव तो धुन पैदा होती है। वित चमर चमड़े दे मड़े हुए सास, फिर छेने धातुआं नाल धातुआं टकरान, पित्तल नाल पित्तल, सोने नाल सोना, चांदी नाल चांदी, धातुआं दे टकराव तो जिहड़ी आवाज पैदा होती है। घड़े दे उत्ते थाप मारीए जिहड़ी आवाज पैदा होती है, उन्हूं नाद शब्द कहिंदे ने। शहनाई है, मुरली है, हारमोनियम है या मनुख है, कि पवन दे टकराव तो आवाज पैदा होती है, सुगर शब्द करके कहते हैं। तत् तंती इत चरम का घण का सी का जान, नाद शब्द सब घटको कहे सुगर स्वास पहचान। ये पंज तरह के शब्द ने, वो जड़ा ओंकार की धुन प्रगट हुई, वो इन्हों सारे साजा की आवाज से संगीतमयी रागमयी। वाजे नाद अनेक असंखा केते वामन हारे, केते राग परिसं कहियन केते गावन हारे, दूर क्यों जाओ। भारत विच संगीत दे जन्मदाते अवतार ने संत जन ने, भारत विच साजां दे जन्मदाते भी संत जन ने, अवतारी पुरश ने। हर अवतारी पुरश नाल कोई ना कोई साज जुड़िया होया, और कोई ना कोई संगीत की खास धारा भी जुड़ी हो। खैर मैं लमकावा ना, परमात्मा प्रगट है अपने शब्द दे राही, जिस तरह मनुख प्रगट होंदा है अपने शब्द दे राही, अपने बोलना दे राही। बोल दस देंदे ने बंदा शांतमई है, बोल दस देंदे ने बंदा क्रोधी है, बोल दस देंदे ने धीरजवान है, बोल दस देंदे ने जल्दबाज है, बोल दस देंदे ने ते महाक्रोधी है, बोल दस देंदे ने ते महामोड़ है, बोल दस देंदे ने ते सियाणा है, सूझवान है। बोल बहुत कुछ दस देंदे ने। ता मरदे सुखन ना गुफ्ता बाशद, ऐबो ओनर ने हुफ्ता बाशद। परमात्मा अपने शब्द दे राही प्रगट है, ऐसा शब्द धर्म की साधना है उसनों सुनना, और जो सुन लवे गुरु नाल जुड़ गए, बस इन्नी गल है। सो गुरु करो जे बहुर ना करना भगत कबीर, सो गुरु करो जे बहुर ना करना, ऐसे मरो जे बहुर ना मरना। कहो कबीर मैं सो गुरु पाया, जाका नाम विवेको,

धैर्यता है, निर्भयता है, ऐसे ऐसे शब्दों नु गाना, परमात्मा दे गुणा नु अपने जीवन दे प्रगट करना है। और जो नहीं गांदा साहिब कहिंदे ने गुण गोविंद गायो नहीं जन्म अकारत केन, कहो नानक हर भज मना जे बिद जल को मेन। तो मैं मुख्तसर करना, समाप्ति करना, क्योंकि गुरमुख प्यारे ने जथे ने एक शब्द भी पढ़ना। परमात्मा प्रगट है अपने शब्द दे रहा है, मनुख प्रगट आंदा है अपने शब्द दे रहा है। परमात्मा दे अखरी अर्थ ने प्रकाश, जो प्रकाश दे रूप दे परमात्मा है वही शब्द दे रूप गुरु है, और जो शब्द दे रूप दे गुरु है वही प्रकाश दे रूप दे परमात्मा है, और जो शब्द नु प्रगट कर देवे उसनु अवतार कह देंदे। गीता दे राहें परमात्मा दा ज्ञान प्रगट होया तो कृष्ण अवतार श्रेणी च आ गए। कुरान दे राहें खुदा दा ज्ञान प्रगट होया, इन्हां बोलां दे राहें वो आवाज प्रगट होई तो मुहम्मद साहब पैगंबर बन गए। अवतार श्रेणी च आ गए धन गुरु नानक देव जी महाराज। प्रभु दे बोल, खसम दे बोल प्रगट होए। कदों प्रगट होंदे ने? जब मनुख दा अपना मन चुप हो जाए ते परमात्मा दे बोल सुनाई देंदे ने। जिन्हों सुनाई देन लग पैन संत है, भगत है, पर जिहड़ा सुन के प्रगट भी कर सके उन्हों अवतार कहिंदे, उन्हों पैगंबर कहिंदे, कोई अवतारी पुरुष। एक छोटी जी गाथा दे राही मैं इसनों स्पष्ट करके समाप्ति करदे हां। जैसे हरनाकश दे घर भगत प्रहलाद, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी कहती है कल्ली धरती दे जिवें कमल दा फुल पैदा हो गया। कल्ली धरती दे हरनाकश दे घर इन्ना वड्डा भगत, इस तरह औरंगजेब दे घर जेबल नशा पैदा हो गई सी, उहदी बच्ची बड़ी धार्मिक सी। जिस तरह दुष्ट हरनाकश दा यह बच्चा ब्रह्मज्ञानी होया, इस तरह महान जालिम उस बादशाह की बच्ची बड़ी धार्मिक सी। शायद आपनों पता होवे इन्हें उपनिषदों का तर्जमा जो है ट्रांसलेशन की सी, पर्शियन दे तर्जमा किया, फारसी दे लिखे दे ग्रंथ मिलते हैं लखनऊ म्यूजियम दे। और फिर इसने कुरान नो ढालिया संस्कृत दे, तुसीं खुद अंदाजा लाओ, और कविता दे डालिया नज़म दे, इन्ने विद्वान से इहदी विद्या भरे बहुत सारे बोल ने किसे वक्त होया तुहाडे सामने रखांगा मुख्तसर। इहदे बोल एक फकीर कोल गांदे आया, एक फकीर ने सुने, लंबा चौड़ा इतिहास, इतना मुतासर होया, इतना प्रभावित होया, उन्हें अर्जी दे दी औरंगजेब के दरबार। आखे जिस दे अंदर ऐसा खुदाई अलहाम प्रगट होया है, मैं उदी ज़ियारत करनी है, मैं उदे दीदार करना है। हुण इस्लामी शरा दा पाबंद, 13 साल की बच्ची हो जाए इस्लाम दे बुरका पहरा देने, पर्दे च रख दे। जेबुल नसा 40 साल की हो गई सी, औरंगजेब ने शादी नहीं की थी सी। कारण तिन्ने भरा मार दिते, भतीजे मार दिते, प्यो नूं जेल दे तड़पा तड़पा के मारिया। फिर ख्याल आया बच्ची का मैं विह कर दया किधरे जवाई मेरे को तखत ना खोल ले, नहीं किया गया। जेबुल नसा ता जिंदगी कुआरी रही है। जेबुल नसा के कुछ संस्कार ते दूजा उसने यह देख लिया, प्यो ने मेरा घर से वसाणा नहीं, मैं अपने हिरदे के घर दे खुदा नूं क्यों ना लिया। बंदगी करन लग पे, अठे पैर नाम जपन लग पे, कुरान की तलावत कर दी है, तस्बीह फेर दी है, अल्लाह हो जपदी रहती है। और जिहड़ा मनुख इतनी मेहनत करे, इतनी साधना करे, तो कुछ ना कुछ ते रस, कुछ ना कुछ ते अनुभव उसकी जिंदगी प्रगट आता है, प्रगट हो गया। उहदे बोलां विच बरकत आ गई, उहदे बोलां दी सत्या आ गई, उहदे बोल मुतासर करन लग पे। वो फकीर इतना मुतासर होया उन्हें अर्जी लिख दी, और औरंगजेब आपे तो बाहर हो गया। इन्हें जरूरत किस तरह की? लेकिन फकीर मनिया, पर मनिया फकीर सी। मुसलमान जिसकी कदम बोसी हासिल करने फखर महसूस करते सन।

600 साल भी नहीं भूलते। मैं श्योर हूँ कि ये मुझे मारेंगे। मैंने इंदिरा जी को ये इल्हाम था कि मारेंगे और उन्होंने मारा। जनरल वैद्या को उन्होंने पूना में जाके मारा, जनरल डायर को लंदन में जाके मारा। इन कौमों की पेशेंस का टेस्ट

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: 1550 AM Gurbani segment is brought to you in memory of Sardar Ajit Singh Bad and Sardarni Surinder Kaur Bad. 1550 Radio de utte Gurbani de kise vi program nu sponsor karna chahunde ho ta call karo
2: 604-900-4790 बीसी लंबिया कौड़िया मिर्चा 51 नू पाउंड बिना बीज वाला हदवाणा 58 सेंट्स नू पाउंड अते 4 पाउंड धोती हुई उर्द दाल अते मूंग दाल लवो 499 दा बैग
3: Family Care Pharmacy.
4: पूरे BC विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
3: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
4: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
3: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो।
4: फ्री प्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल-नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
5: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक
3: जा कॉल किरण @604-581-1900